0: क्या चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार आज मुट्ठी से हो गया हमको आज मुट्ठी से हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज कितने हो गए आंखें, आज कितने हो गई आंखें, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: खेले दर्जी आया शर्म आई गिरती हूँ तो खेले दर्जी आया शर्म आई गिरती हूँ तो खेले पहले ही बाजी न गए हम पहले ही बाजी न गए हम
1: क्या
0: हार हार हार ओ राजा हार हार हार ओ राजा हार हार हार आज किसी पे हो गई आगे आज किसी पे हो गई आगे चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए डिराटा डी

राजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबियत बिचकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा, डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा, डेड़ा टा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दिलाता

बस हमारे पंछी बन के हो गए 9 से 11 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 से 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला का दिला का जो जो

राज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबियत बिटकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला का दिला का

जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी बिटकी जाए।

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला का दिला का जो

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बितकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ताडा, डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ताडा, डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

चल बेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता जी

अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी बिटकी जाए।

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला

तेरी मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है मिलने की।

प्यारी प्यारी मगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

ठोकर में सारा जहां, मैं जो अपनी कहूँ दास्ता, तेरे सीने से उठे धुआं, बहलाना ना मुझे झूठे दिलासों से बहलाना।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाए।